0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: The following is a paid program. The views and opinions do not represent those of CKJS or its advertisers.
2: संगीत
3: संगीत
4: संगीत रूदी खुराक है
2: आत्मा दी आवाज है
4: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है
4: जिंदगी जिंदगी
2: जिंदगी प्यार है
4: जिंदगी सांझ है खिमा है
2: जिंदगी एक रंगमंच भी है
4: इस रंगमंच ते हाजिर है वतन दी मिट्टी दी महक ते दिलां दी प्रीत नाल लबरेज
2: कल्चर ऑफ पंजाब
4: कल्चर ऑफ पंजाब
5: नमस्कार आदाब सामीन कैसे हैं आप इसी दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से हैं सेहतयाब हैं और खुश हैं मैं प्री चाहूंगी इजाजत आज के शो की शुरुआत करने की मेरे अपने एक एक्सपीरियंस या यूं कह लें अपने खुद के थॉट के साथ अच्छा बचपन के दिन याद आते हैं ना कम से कम मुझे बहुत याद आते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ रीजंस की वजह से बाजुका टाइम टाइम के साथ रीजंस बदल जाते हैं और आजकल जिस वजह से याद आ रहे हैं वो ये है कि कोई टेंशन होती थी कोई परेशानी होती थी किसी भी तरह का कोई सदमा होता था नींद आ जाया करती थी और बड़े सुकून से सो जाया करते थे और तो और एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा टेंशन होती थी वो ये थी कि पेपर है पर नींद है कि आए चली जा रही है और आप किसी भी तरह से उस नींद को रिजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छा ये थी बचपन की खास सौगात जब इंसान बेफिक्री की कैफियत में होता है जब उस पर सोचों की बारिश नहीं होती तब उसे हासिल होती है ये सौगात जिसे कहते हैं गहरी और पुरसुकून नींद अमेरिका में एक रिसर्च की गई कि जिन लोगों को फैसले करने में दिक्कत होती है टू बी और नॉट टू बी ये तब होता है जब हमारी नींद पूरी नहीं होती और अच्छी नींद लाने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि जिस मसले से भी आप बचते फिर रहे हैं उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे एड्रेस कर लें भागे नहीं सिचुएशन से फेस करें सॉल्यूशन निकालें और चैन की नींद सो जाए रात को ओके टाइम टू मूव ऑन और अब बात करते हैं आज की तारीख की यानी 21 मई की आज ही की तारीख को 1851 को स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई थी कंप्लीटली कोलंबिया साउथ अमेरिका में 21st ऑफ मई 1939 को द कैनेडियन नेशनल वॉर मेमोरियल को अनवेल किया किंग जॉर्ज सिक्स और क्वीन एलिजाबेथ ने ओटावा में साथ ही साथ आज ही की तारीख को 1965 में कैनेडियन प्रोविंस ने अडॉप्ट किया कर लिया था फ्लैग ऑफ ओंटारियो को इसके अलावा 21st ऑफ मई 1991 को फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को असैसिनेट किया फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने नियर मैड्रास साथ ही साथ आज जन्मदिन है इंडियन अमेरिकन फैशन डिजाइनर नईम खान का जिन्हें जाना जाता है उनके द्वारा इंट्रिकेटली डिजाइंड गाउन्स के लिए जो पहने फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा ने क्वीन नूर ऑफ जॉर्डन और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडलटन ने इन एडिशन टू ऑल दिस आज ही की तारीख को जन्मदिन है इंडियन मॉडल एक्ट्रेस फिजिशियन और मिसेस वर्ल्ड 2001 का यानी अदिति गोवित्रिकर का अदिति को हमने देखा रियलिटी टीवी सीरीज बिग बॉस सीजन 3 में एज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स इसके अलावा आज यानी 21 मई को ही दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डिवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद है कि सबको मौका मिले टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कल्चरल डिवर्सिटी एंड दे लर्न हाउ टू लिव टूगेदर इन हार्मनी

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: What is life? जब ये सवाल पूछा एक 18 साल के यंग जेंटलमैन से तो जवाब आया कि जिंदगी कोई पार्किंग स्पेस नहीं, रेसिंग ट्रैक है। सो जस्ट कीप ऑन मूविंग एंड डोंट लेट योर फेलियर स्टॉप यू। वेल, इजंट दैट अ वेरी पॉजिटिव, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच? इसलिए किसी और से नहीं, खुद से वादा करें कि ये सब रिजेक्शंस, फेलियर्स आपको रोक नहीं पाएंगे बढ़ने से। ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: जब हम किसी कामयाब इंसान की जिंदगी को देखते हैं तो हमें सरफेस पर, ऊपरी तह पर सिर्फ उनकी सक्सेस नजर आती है। उनकी मंजिल कामयाबी का वो सफर जो उन्होंने तय किया, जिसका हिस्सा मायूसियां और नाकामयाबियां भी थी, वो नहीं देख पाते। एजे क्रॉनिन का नॉवल द स्टार्स लुक डाउन आज एक क्लासिक नॉवल माना जाता है, पर आपको पता है कि 22 बार इस नॉवल को रिजेक्ट किया गया। पब्लिशर्स ने 22 बार इसे छापने से मना कर दिया था। अब जरा सोचे कि अगर पहली बार ही रिजेक्ट होने पर एजे क्रॉनिन ने हार मान ली होती तो क्या वो कभी अपनी इस मंजिल तक पहुंच पाते।

0: ਹੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ, ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ।
1: आजकल का ट्रेंड ये है कि हम हर काम में इजी सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रायोरिटीज ही गलत हैं हमारी। फॉर एग्जांपल, रिश्तों में वक्त और प्यार की बजाय हम पैसे और गिफ्ट देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि टाइम देने से तो आसान लगता है कि जाएं और बीवी बच्चों को महंगे गिफ्ट खरीद दें और ये प्रूव कर दें कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। पर ये जिंदगी की हकीकत नहीं है। वेल, व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज्ड टू डू देन? वेल, आई विल डेफिनेटली शेयर आफ्टर दिस नेक्स्ट नंबर। स्टे ट्यून्ड टू 106.3 FM शो। आपका अपना है कल्चर ऑफ पंजाब, व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय देव दातला।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰੋਜ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करने में ही भूल कर ली तो फिर वक्त और लाइफ दोनों वेस्ट कर दिए। कुछ लोगों का माइंड बस घूमता रहता है अराउंड 3 P's, पैसा, पावर एंड पोजेशंस। इनसे ऊपर उठकर सोच पाना उनके लिए शायद नामुमकिन है, पर ये सच्चाई नहीं है। और यकीन माने, जब ये भ्रम टूटता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब स्टेज ऐसी आ जाती है कि ना तो गया वक्त हाथ आता है और ना आगे कुछ नजर आता है।